0: वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
1: राइट
0: मैं दुनिया